0: बढ़ती जा रही है। बेफालतू कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिया है। दिलजीत दोसांझ के लिए यहाँ टेंशन का माहौल बन गया है।
1: जट से छोटा किसी तो धवे ने।
2: Attention passengers, we've now reached